नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन

0: के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने क्रॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो

0: सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
0: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
0: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the

0: of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: अपडेट रहे आगे रहे एक्स पर एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मुज, असालवे, ज़िरफ्त, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए DNA के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से DNA नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए DNA नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
3: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
4: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गए हुए हैं।
3: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की

0: टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उप कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र, एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिंदुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. U.S. begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran. Explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Master Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas and refrain from buying gold unless necessary.
4: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है
2: डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और असमानाज अंसारी जी ने।
0: लिखते हैं, गलती करना मनुष्यत्व है और क्षमा करना देवत्व। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी,
0: ग्राम बमना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते। उमंग कार्यक्रम अनमोल रत्न के समान बहुमूल्य है। इसमें ज्ञान, जानकारियों एवं मनोरंजन का बहुमूल्य खजाना मिलता है। स्वतंत्रता दिवस पर विशेष रूप से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुने एवं बहुत पसंद आए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी लिखते हैं,
2: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। इन दिनों मैं आपके कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं और संदेश नहीं भेज पा रहा हूं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं आपका कार्यक्रम नहीं सुनता। उमंग कार्यक्रम मेरा मन पसंद कार्यक्रम है। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसे मैं हर रोज सुनता हूं और कभी कभार अगर छूट भी जाए तो बड़ा दुख होता है।
0: आप सबके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चलते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। ये भी जानिए श्रृंखला में आज हम जानेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, एक और ऐसी जानकारी जो बहुत कम लोग ही जानते हैं।
2: श्रोता, जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं तो हमारे

0: वन में अक्सर हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल जैसी जगहों के नाम आते हैं। आपको बता दें कि लोथल दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में से एक है, लेकिन एक और नाम है जिसकी चर्चा अक्सर नहीं होती है,
1: और वो नाम है राखीगढ़ी का।
0: जी,
1: सिंधु घाटी की सभ्यता के कई प्राचीन स्थल आज पाकिस्तान में हैं।
0: जी,
1: लेकिन राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में है। इतिहास बताता है कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी की सभ्यता का प्राचीनतम नगर है।
0: राखीगढ़ी की खोज 1963 में हुई थी। ये स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी स्थलों से ज्यादा बड़ा पाया गया है।
1: राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा है। यह स्थल लगभग 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता का हिस्सा माना जाता है।
0: श्रोता, उत्खनन करने पर राखीगढ़ी में चौड़ी सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, बहुमंजिले मकान, शमशान गृह के अवशेष और आभूषण बनाने वाली इकाइयां मिली हैं, जो इस सभ्यता के आधुनिक और व्यवस्थित जीवन का सबूत हैं।
1: यहाँ से कई कलाकृतियाँ, कांसे के उपकरण, मिट्टी के बर्तन और मानव कंकाल भी मिले हैं, जिनके सर उत्तर दिशा की ओर थे, जो संभवतः उस काल की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाते हैं।
0: पुरातत्वविदों का मानना है कि सरस्वती नदी के सूखने के कारण या किसी जबरदस्त भूकंप के कारण ये सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई। राखीगढ़ी में मिले मानव कंकालों के डीएनए जांच के द्वारा उस समय के लोगों की जीवन शैली, वंश और भोजन संबंधी और अधिक जानकारी प्राप्त होने की उम्मीद है।
1: तो श्रोताओं, इस प्रकार राखीगढ़ी पुरातत्व के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण और विशालतम स्थलों में से एक है, जो भारतीय प्राचीन सभ्यता की समझ बढ़ाने में हमारी मदद करता है।
0: तो ये थी जानकारी सिंधु घाटी की सभ्यता के प्राचीनतम नगर राखीगढ़ी की। अब आज का प्रश्न।
1: श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राखीगढ़ी की सभ्यता धीरे धीरे क्यों समाप्त हो गई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, राखीगढ़ी की सभ्यता धीरे धीरे क्यों समाप्त हो गई?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
1: और हाँ, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारे ईमेल और IVRS नंबर पर भी अपना उत्तर और संदेश भेज सकते हैं,
0: और हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हमारे शैक्षिक कार्यक्रम।
0: श्रोताओं, एक बात बड़ी मजेदार है, दुनिया के किसी भी देश के नाम उतने नहीं हैं जितने हमारे देश के नाम हैं। आज के कार्यक्रम के द्वारा हम जानेंगे कि हमारे देश भारत के कितने नाम हैं और क्यों हैं, और कई बेहद रोचक बातें भी जान पाएंगे, विशेष रूप से ये कि हमें संविधान के अनुसार अपने देश को क्या कहना चाहिए।
1: तो आइए सुनते हैं NCERT की इतिहास की 6वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
3: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. It goes wide through the offside.
2: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
2: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
5: सर।
6: तुम दोनों आजा, आजा, अंदर आजा, आजा शाबाश।
5: क्या अभी आपके पास समय होगा?
6: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
5: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच

0: देखने गए थे?
1: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
2: जी वही
0: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
1: अच्छा
2: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
1: और
2: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
1: हाँ बोलो
2: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सर दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
2: 5000 वर्ष पहले?
1: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
0: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
2: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
1: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
2: अच्छा।
1: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
2: जैसे?
1: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
2: वैदिक समूह?
1: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
2: भरत?
0: भरत नाम तो हमने सुना है।
1: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
2: ओ, भरत। अच्छा तो ये बात है।
1: हाँ।
2: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारत वर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
0: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
1: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
2: वो क्या सर?
1: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिदू या हिंदू कहा है।
0: फारसियों ने सिंधु को हिदू या हिंदू कहा है,
2: भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
2: है ही नहीं?
1: हाँ।
2: ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
2: ओ।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू।
1: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
2: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
2: अच्छा।
1: हाँ
0: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल,
0: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
2: अच्छा।
1: हाँ,

0: महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ?
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ।
0: हाँ,
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: भारत अर्थात इंडिया, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह, बाल कलाकार अनुष्का और जीशा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, आलेख

0: अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण कुसुमलता, तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया। श्रोताओं, अक्सर एक प्रश्न मन में आता है, कौन है भारतवासी
2: जी?
1: इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर प्रस्तुत कर रहा है ये इतिहास गीत। इसके द्वारा हमें पता चलेगा वास्तव में कौन है भारतवासी।

0: अभी आपने सुना एक खूबसूरत इतिहास गीत कौन है भारतवासी। आशा है श्रोताओं इस गीत के द्वारा आपने बहुत कुछ जाना होगा।
1: श्रोताओं भूगोल में भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा दी गई है, लेकिन पता है क्यों?
0: क्योंकि भारत तीन दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है।
1: यदि चारों ओर से पानी से घिरा होता तो द्वीप कहलाता। भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इन समुद्री तटों पर बंदरगाह हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत के बंदरगाह एक परिचय।
2: सोनू एक प्यारा सा बच्चा है, हंसमुख चंचल पर थोड़ा नटखट भी। उसे समुद्र के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल की छुट्टियां होते ही वो अपने चाचा जी कैप्टन अशोक के साथ, जो मर्चेंट नेवी में है, समुद्री यात्रा पर निकल जाता है। आइए देखें सोनू अपने चाचा जी के साथ क्या बातें कर रहा है।
3: चाचा जी वो देखिए।
4: क्या?
3: दूर वहाँ मुझे एक जहाज आता दिखाई दे रहा है।
4: वो?
3: हाँ,
4: हाँ बेटा, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ जहाज आकर ठहरते हैं।
3: ओ।
4: देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ।
3: हाँ, और ये देखिए यहाँ तो जहाजों में सामान चढ़ाया और उतारा भी जा रहा है।
4: हाँ बेटा,
3: पर ये जगह कौन सी है?

0: এতিয়া নিবেদন কৰা হৈছে পৰাগমালা লাইভ অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াইছে করুণা শ্রীবাস্তবে।
1: सभी श्रोताओं का आज के परागमाला लाइव में मैं करुणा श्रीवास्तव हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जब भी हम 1960 के दशक के सुनहरे सिनेमा का जिक्र करते हैं तो एक हसीन चेहरा, वो निराली आँखें और माथे पर सजी वो खास जुल्फें आँखों के सामने आ जाती हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज परागमाला लाइव में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सदाबहार खूबसूरती और अदाकारी का मिसाल साधना जी की। आज उनका जन्मदिन है। साधना जी की खूबसूरती और मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ का वो जादू आज भी हर दिल को छू लेता है।

साधना जी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। उनका नाम उनके पिता की पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा गया था। और देखिए किस्मत का खेल, जिस बच्चे का नाम एक एक्ट्रेस पर रखा गया वो आगे चलकर खुद हिंदी सिनेमा की आइकॉन बन गई। साधना जी ने अपने करियर की शुरुआत 1955 में राज कपूर साहब की सुपरहिट फिल्म श्री 420 में एक कोरस डांसर के रूप में की थी, लेकिन उनके किस्मत का ताला खुला भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना से। इसके बाद शशधर मुखर्जी की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें फिल्म लव इन शिमला में कास्ट किया गया।

माना जाता है कि साधना जी का माथा थोड़ा चौड़ा था, तो निर्देशक आर के नैयर साहब ने साधना जी के बाल माथे पर कटवा दिए। बस फिर क्या था, 60 के दशक में हर लड़की पार्लर जाकर साधना कट स्टाइल ही मांगती थी। सिर्फ बाल ही नहीं, चूड़ीदार कुर्ता और तंग सलवार का फैशन भी साधना जी ही बॉलीवुड में लेकर आई।

श्रुताओ, साधना जी सिर्फ एक फैशन आइकॉन नहीं थी, वो एक बेहतरीन अदाकारा थी जिन्होंने हर तरह के किरदार निभाए। लेकिन श्रोताओ, हर चमकीली जिंदगी के पीछे कुछ अंधेरे पल भी होते हैं। 60 के दशक के अंत में साधना जी को थायराइड की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर असर पड़ा। इलाज के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा और वह कुछ समय के लिए फिल्मों से दूर हो गई। हालांकि उन्होंने वापसी की और गीता मेरा नाम जैसे फिल्म का निर्देशन भी किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अभिनय की दुनिया से अलविदा ले लिया।

उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो चाहती थी उनके प्रशंसक उन्हें हमेशा वही खूबसूरत हसीन साधना के रूप में याद रखें। इसलिए उन्होंने अपने ढलते दिनों में मीडिया और कैमरे से दूरी बना ली। 25 दिसंबर 2015 को साधना जी हमें छोड़कर चली गई, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जब भी सादगी, नज़ाकत और क्लासिक सिनेमा की बात होगी, साधना जी का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिखा जाएगा।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছতে 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি আৰু 12:05 আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाव शिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है।

0: পাঁচ মিনিটত ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्देस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की, कहा वैश्विक

0: कि चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
3: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया।

0: श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री रादोस्वाफ शियोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट X@AIR News Hindi और पब्लिक पर @AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी

0: समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
1: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्राव में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
2: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एया आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु। এতিয়া শুনক পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दीपा, कहाँ खो गई हो आप?
1: मैं तो हमारे जो श्रोता है और सखियां हैं उनके संदेशों में खो गई थी कि क्या क्या संदेश आए हैं, वो चुन रही थी। तो चलिए आज भाई संदेश पढ़ना है तो ये भी तो बताना होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे।
0: खाद्य पैकेट्स पर लिखी जानकारी, जो हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आंख मूंद के उन पैकेट को खोलते हैं और खा लेते हैं उसकी चीजें बिना देखे, ना
1: बिना
0: अक्सर होता
1: देखे
0: है
1: बिल्कुल।
0: ये, ना कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए हम लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि पैकेट बना हुआ है तो ये अच्छा ही होगा।
1: अच्छा ही होगा। और जब सफर में जाते हैं तो देखो ना, एक ने पैकेट खोला तो सभी लोग खा लेते हैं। फिर भले हम कहते हैं कि अरे हम घर में नहीं खाते, बस ये तो क्या बाहर निकले ना तो खा लिया, लेकिन क्या खा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है।
0: तो आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकांश खाद्य पैकेट जो होते हैं बंद होते हैं, जैसे बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन, दूध, जूस, मसाले। इन खाद्य पदार्थों को खरीदते समय केवल पैकेट का रंग, आकर्षक चित्र या विज्ञापन देखकर खरीदना उचित नहीं, बल्कि पैकेट पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: क्योंकि इनमें से इससे हमें उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, पोषण और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि उसमें पैकेट पे नाम क्या लिखा होता है, इससे हमें पता चलता है कि पैकेट के अंदर वस्तु कौन सी है। फिर ये जानकारी उसमें दी जाती है कि खाद्य पदार्थ कब बनाया गया है, या कब बनाया या कब पैक किया गया है, इससे हमें उसकी ताजगी का पता चलता है। फिर एक होता है पैकेट पर एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा होता है, तो इसमें समाप्ति तिथि के बाद खाद्य पदार्थ का सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए खरीदने से पहले उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए।
0: साथ ही पैकेट पर लिखा होता है खाद्य पदार्थ को बनाने में किन-किन चीजों का उपयोग किया गया है, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, मसाले आदि। जिन लोगों को किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी होती है उसके लिए जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पोषण संबंधी जानकारी के पैकेट पर कैलोरीज लिखी होती है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, चीनी और नमक की मात्रा लिखी होती है। इससे हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है भी या नहीं भी।
1: बिल्कुल। अच्छा, शुद्ध वजन या मात्रा, उसमें कितना वजन है वो भी लिखा होता है कि 100 ग्राम है, 500 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, इससे वस्तु की हमें सही मात्रा पता चलती है। और इसके अलावा हर पैकेट पर उसका अधिकतम मूल्य लिखा होता है, दुकानदार को इससे अधिक कीमत नहीं लेनी चाहिए और इसलिए खरीद

0: खरीदते समय एमआरपी हमें देखना जरूर चाहिए।
1: साथ ही उस पर दो चिन्ह होते हैं दीपा, खाद्य पैकेट पर अगर हरे रंग का चिन्ह है तो ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, और अगर लाल रंग का चिन्ह है तो ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ हो सकता है। इससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसके अलावा पैकेट पर कंपनी जिसने बनाई है उसका नाम और पता भी दिया जाता है, इससे आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। फिर कुछ खाद्य पदार्थों में ठंडी और सूखी जगह पर रखना आवश्यक होता है ऐसा लिखा रहता है, जबकि कुछ वस्तुओं को फ्रिज में रखना पड़ता है। पैकेट पर दी गई भंडारण संबंधी जानकारी का हमें पालन करना चाहिए।
1: एक हमारे साथी कहते हैं कि फूड पैकेट्स पर लिखी जानकारी पढ़ना जरूरी। बिल्कुल ताजा किस्सा बताना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी का पीहर अजमेर में ही है और हम रक्षाबंधन के दिन मेरे ससुराल गए थे। धर्मपत्नी की भाभी ने मिठाई के साथ दो कुकीज के पैकेट भी कॉलोनी के किसी दुकानदार से मंगवा कर दिए थे। मेरी नजर कुकीज के पैकेट पर पड़ी और मैंने देखा था उस पर यूज बाय डेट 26 अगस्त 2026, इन एक्सपायर डेट के कुकीज थे। हाथों हाथ हमने दुकानदार को वापस भिजवाए। दुकानदार ने कहा गलती हो गई, सतर्कता से एक्सपायर्ड कुकीज उपयोग करने से हम बच गए। कितनी ये जागरूकता हर किसी को जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। और एक संदेश आया है कि क्योंकि इसमें भले बुरे की पहचान होती है, सब जो सारी जानकारी लिखी होती है, फिर खाए जाने वाले पैकेट्स की जानकारी तो और भी अधिक आवश्यक है, तो इससे उसके गुणवत्ता का ज्ञान होता है। वैसे पैकेट्स की जगह प्रकृति पद्धत ताजे पदार्थ का सेवन किया जाए तो अधिक सेहतमंद होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है। भाई वो तो है, लेकिन अब स्कूल से निकलकर बच्चा अगर अटक ही जाए कि हमें तो ये खाना ही है, ये आलू के चिप्स हम लेके ही रहेंगे, तो अब हम क्या कीजिएगा, बच्चे मानते नहीं है। तो हर बार हमें उन्हें कभी कभी, भले चाहे आप कहिए कि 10-20 बार में से एक बार हमें दिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैकेट कितना स्वास्थ्यवर्धक है और कितना हानिकारक है, बच्चों को इसकी पूरी जानकारी देकर कि आप खरीदें।
1: कितनी भी जिद करें उसमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। हाँ, उसके अंदर के कंटेंट्स ठीक है कि बाद में चेक कर सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट पहले चेक करना जरूरी है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि फूड पैकेट पर लिखी हुई जानकारी पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सभी को घर में व्रत में राजगीरा के लड्डू खाए थे, एक ब्रांडेड कंपनी से रामदाना, हम राजगीरा को पूर रामदाना कहते हैं, जो जागरी गुड़ से बना हुआ था, सभी ने खाया। जब पैकेट में पढ़ा गया उसमें सोडियम की भी मात्रा थी। हमारे घरों में व्रत में नमक नहीं खाते, व्रत में तो ये गलती हो गई, उसका निदान भी किया गया, पर मन में कहीं लग रहा था पैकेट पढ़कर ही खाना चाहिए, इसलिए फलाहार का भी

0: तो ये गलती हो गई, उसका निदान भी किया गया, पर मन में कहीं लग रहा था पैकेट पढ़कर ही खाना चाहिए, इसलिए फलाहार का भी पैकेट आप देख लीजिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
1: हाँ, आप
0: बहुत
1: देखिए
0: सही
1: कितना
0: जानकारी।
1: सही जानकारी कि अगर आप व्रत में हैं और अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हमारे मन में एक भ्रांति आ जाती है कि देखिए हम नहीं खाना चाहते, फिर भी नमक चला गया। अच्छा, इसके अलावा नूडल्स, सूप या रेडी टू ईट भोजन, ये सारे जो पैकेट होते हैं उन्हें बनाने का या उपयोग करने की विधि भी उस पर लिखी होती है जो पैकेट से उन पर, इससे खाद्य पदार्थ को सही तरीके से तैयार किया जा सकता है और खाद्य पैकेट पर लिखी जानकारी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनाली, हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसके निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, वजन और मूल्य आवश्यक अवश्य जांचना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि भाई चिप्स के पैकेट भूख लगने पर सभी बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, पैकेट पर सब कुछ लिखा रहता है, आपको इसमें कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है, कितना ट्रांस फैट है, कितना अनसेचुरेटेड है और कितना इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा है। कुछ विदेशी ब्रांड के चॉकलेट और बिस्किट पर वैसे खाद्य तेल रहते हैं जिसे हम खाना नहीं चाहते, तो उसके बारे में भी स्कैन करके सब जानकारी मिल जाती है। तो खाने का सामान और डेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए?
1: एक गाना तो सुनना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि एक जागरूक उपभोक्ता वही है जो आकर्षक पैकेट के बजाय उसकी सही जानकारी को पढ़कर, सोच समझकर उस चीज को खरीदता है।

0: दीपा, इस गाने को सुनकर मुस्कुरा रही थी या मुस्कुराहट का कोई और कारण है?
1: जब ये गाना सुन रही थी तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं ना। सखियों, याद आते हैं कि नहीं, जब हम अपना घर बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कहीं पे किसी ने अपना इंडिपेंडेंट घर बनाया हुआ है, कहीं किसी ने फ्लैट खरीदा है, तो जिस तरह से सजाते हैं, तो नहीं, गीत सुन करके हमारे अपने पुराने दिन याद आते हैं। और फिर देखिए, चेहरे पर एक प्रसन्नता यानी एक मुस्कान आ ही जाती है।
0: फिर वो छोटी छोटी खुशियों में भी क्यों ना हो, किसी ने कुछ साड़ी खरीद दी
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: फिर किसी ने कुछ खाने का सामान ही दे दिया, यानी जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं ना, वो सचमुच जिंदा दिल होते हैं।
1: ये बात छोटी खुशी की बोल रही हो सोनाली, हमें पता है साड़ी लेकर ही रहोगी, है ना। भाई, साड़ी तो लेकर रहेगी, सोनाली को दिलवानी पड़ेगी साड़ी।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रसन्नता का अर्थ केवल किसी विशेष उपलब्धि या स्थिति तक पहुंचने में नहीं, देखिए श्रोता भी कह रहे हैं, बल्कि जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करना है। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि ये आनंद का क्षण है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि एक जीवन शैली है। प्रसन्नता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है, हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, ना कि भौतिक उपलब्धियों पर।
1: बिल्कुल। और अपने आसपास या परिवार में या हमारे परिजनों में देखा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती है, और अगर उनके स्थितियों को देखो, परिस्थितियों को देखो, तो बहुत कठिनाइयां चल रही है, लेकिन एक सतत, एक हमेशा मंद मुस्कान उनकी बनी रहती है। और फिर हम कहते हैं, भाई जीना है तो इनकी तरह ही जीना
0: ये
1: चाहिए, है
0: मेरे
1: ना।
0: लिए तो नहीं कह रही आप?
1: शायद हो भी सकता है।
0: वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, पर होता इसके विपरीत है। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दे। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर प्राणी स्वयं में प्रकृति की विशिष्ट पहचान है। बहुत सुंदर
1: बिल्कुल,
0: बात
1: बहुत
0: लिखी
1: सुंदर बात की है कि भविष्य की चिंता नहीं, उस पर सोच और समझ रखनी चाहिए कि
0: जी।
1: भाई हमें करना है क्या नहीं करना है। चिंतित हो करके हमारे बालों को सफेद कर लें और फिर चेहरे पे हमेशा एक उदासी उदासी लिए रहे ना, तो लोगों को लगने लग जाता है, परिवार को लगने लग जाता है, हमेशा ये इतना दुखी क्यों रहते हैं।
0: और इनसे
1: लेकिन
0: दूर ही भागते लोग।
1: हाँ, ऐसा भी होता है। और देखो, एक और संदेश है, ये कहता है कि प्रसन्नता का पैमाना न धन है न पद, उसका पैमाना है कि रात को नींद कितनी गहरी आती है, सुबह मन कितना हल्का उठता है, और किसी दूसरे की खुशी देखकर आपके भीतर जलन नहीं बल्कि एक सच्ची मुस्कान आती है। जब छोटी छोटी बातों में भी दिल कहे कि जो है बहुत है, और कल की चिंता आज की शांति को नहीं छीन पाती, तो समझिए आप सच में प्रसन्न है। भाई, ये तो इतना प्यारा संदेश है, इसको तो ऐसा लगता है 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, है ना।
0: या
1: दो
0: फिर अपने पास रख लेना चाहिए, है ना।
1: हाँ, इसको सेव करके रखा जा सकता है। बिल्कुल
0: एक
1: सही कहा
0: साथी कहते
1: सोनाली।
0: हैं, प्रसन्नता बांटने से नहीं बढ़ती, सॉरी, प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है। प्रसन्नता केवल हंसने का नाम नहीं बल्कि मन के भीतर की वो शांति है जो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखाती है। जब अपेक्षाएं कम और कृतज्ञता अधिक होती है तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है। ये संदेश भी कितना सुंदर है
1: बहुत सुंदर।
0: जी।
1: एक संदेश कहता है कि खुश रहना, प्रसन्नता, प्रसन्न रहना जीवन का वो आंतरिक आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और संतोष पर निर्भर करता है। प्रसन्न रहना जीवन जीने का एक खूबसूरत तरीका है। ये तो हमारे मन के भीतर ही निवास करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है, वही असली मायनों में प्रसन्न रहता है। अपनी मुस्कान की वजह खुद बनिए, किसी और का इंतजार मत करिए।
0: और अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बस जैसे है वैसे रहे, बस खुश रहे, मस्त रहे और गीत सुनते
1: सुनते
0: रहे।
1: रहें।

0: तो दीपा कहाँ खो गई थी? व्यंजन में?
1: व्यंजन में बिल्कुल। तो आप पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही
0: जी,
1: हूँ।
0: हमारे एक साथी ने नारियल का मैसूर पाक लिखने की रेसिपी लिखकर भेजी है। कहते हैं कि पानी वाला नारियल है, शक्कर और घी, नारियल का कल वाला हिस्सा निकालकर सफेद वाले हिस्से को मिक्सी में डालकर बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर ले। नारियल का बुरादा को कटोरी में भरकर नाप ले। अगर कटोरी नारियल का बुरादा है तो पौना कटोरी शक्कर और एक कटोरी घी लगेगा। तीनों को मिलाकर कढ़ाई को मध्यम आंच पर एक ही डायरेक्शन में चलाते रहे। धीरे धीरे शक्कर घूमेगी और फिर घी बाहर आएगा। इस वक्त अपने हाथों को बचाकर रखना होगा क्योंकि घी उड़ता है। लगातार एक ही डायरेक्शन पर चलाते रहना है और कढ़ाई पर जब हल्का गुलाबी सा रंग दिखे तो इसमें पहले ही तैयार स्टील की छन्नी और इसके नीचे एक बर्तन रख दे। मिश्रण को इस पर फैला दे। घी पूरा नीचे आ जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो टुकड़े कर ले। बहुत स्वादिष्ट लगता है।
1: बिल्कुल। और ये एक रेसिपी है नारियल की बर्फी। तो उसके लिए आपको नारियल का बुरादा लेना है 2 कप, और चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप, या मावा भी ले सकते हैं यानी कि खोया 3/4 कप, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो थाली को चिकना कर लें पहले, और एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छी तरह चिकना कर लें। फिर एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी गर्म करें। इसमें दूध और चीनी डालकर धीमी आंच पर चीनी घुलने तक पकाएं। और यदि आप मावा मिला रहे हैं तो इसे भी इसी समय दूध चीनी के साथ कढ़ाई में डाल दें। फिर इसमें अब नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर, और लगातार चलाते रहें डालने के बाद। और जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो कढ़ाई में न छोड़ने लगे, ऐसा देखना चाहिए आपको। और फिर आप इसको जो थाली आपने तैयार करी घी लगी उस पे बर्फी बना के बर्फी के लिए जमा सकते हैं। और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बर्फी के शेप में काट लीजिए।
0: और खा लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: अब मीठा हो गया तो एक नमकीन भी बनना चाहिए ना, तो दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और एक बेहद स्वादिष्ट और खूब खुशबूदार डिश बनाते हैं, नारियली चावल। इसके लिए सामग्री आपको लेना है बासमती चावल 1 कप, नारियल का दूध लेना है 1 कप, पानी 1 कप, और बघार यानी छौंक के लिए लेना है राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, घी और काजू। बनाने की विधि कैसे होगी, कुकर में घी गरम करें, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और काजू डाल के भून लीजिए, जो धुली हुई बासमती चावल है वो डाल दीजिए, 1 मिनट तक चलाएं। अब इसमें 1 कप पानी और 1 कप नारियल का दूध मिला करके डालें और बाद में बिल्कुल आखिर में नमक डालें। कुकर का ढक्कन बंद करें, धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएं। आपके ये जो खिले खिले नारियल चावल हैं वो तैयार।
1: तो मैं तो आज घर में ये सारी रेसिपीज बनाने वाली हूं।
0: मैं भी यही सोच रही थी।
1: आप गाना सुन ले
0: चलिए।

0: तो श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे, उनके कारण कार्यक्रम में बहुत बहुत हमें मजा आया।
1: बिल्कुल,
0: और ऐसा लग रहा था कि हमारे सारे श्रोता हमारे साथ में हैं।
1: और पौष्टिक जो आपने व्यंजन विधियां भेजी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है साहित्यकार ज्योति जैन जी को, जो इंदौर से आई हैं। विविध भारती के स्टूडियो में ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये बताइए कि रेडियो में आज आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि रेडियो से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। कैजुअल अनाउंसर रही हैं और फिर परमानेंट अनाउंसर के लिए कॉल लेटर आया था जो ज्वाइन नहीं किया, तो क्या कहानी है ये बताइए आप।
2: जी ममता जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जहां बैठी हूं ये जगह मेरे लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि आज से 40 वर्ष पूर्व जब मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम किया तो स्टूडियो का वातावरण मेरे लिए बिल्कुल सुपरिचित रहता है। मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर 3 वर्ष काम किया पढ़ाई के साथ साथ, फिर परमानेंट के लिए एग्जाम दी और जब उसका रिजल्ट आया तो मेरी नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया।
1: अच्छा।
2: और दरअसल उस वक्त क्या होता है, जब आप प्रेम में होते हैं ना तो प्रेम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो और चूंकि मैं जिस परिवार में आ रही थी वहां थोड़ा सा मारवाड़ी कल्चर है, तो नौकरी पेशा, और उस समय 40 साल पहले लड़कियां इतनी नौकरी नहीं करती थी बहुत ज्यादा, और ये मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो मैंने निश्चित रूप से अपने प्रेम को चुना
1: जी।
2: और इस तरह से बस शादी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों तक मैंने अपने दाम्पत्य और मातृत्व का आनंद लिया, और उसके बाद मैं आकाशवाणी इंदौर से अभी भी जुड़ी हूँ, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या वार्ताओं के माध्यम से
1: जी,
2: और कुछ प्ले में भी मैंने अपने स्वर दिए हैं।
1: क्या बात है।
2: जी जी।
1: तो बात कविताओं की चली है और इधर आप बता रही थी कि आपके पतिदेव ने प्रपोज किया तो कोई प्रेम कविता उनके लिए लिखी है?
2: हाँ, उनके लिए दरअसल जिस समय हम कोर्टशिप में थे तो बड़ी सारी कविताएं खूब लिखी। जब आप प्रेम में होते हैं ना ममता जी, तो
1: शब्द फूटते हैं बहुत सारे।
2: शब्द फूटते हैं, से झरना फूट पड़ता है शब्दों का। और प्रकृति में प्रेम ही प्रेम नजर आता है, तितलियों में प्रेम, फूलों में प्रेम, हर जगह प्रेम नजर आता है, और जो संवेदनाएं थी वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गई
1: जी।
2: और उस समय तो खूब सारी कविताएं लिखी, बाद में जब वो कविताएं पढ़ती थी तो लगता था अरे क्या लिखा है, ऐसी अनगढ़ कविताएं हुआ करती थी
1: जी, जी।
2: लेकिन बाद में, और शरद जी पर तो मैंने खूब प्रेम कविताएं लिखी हैं। एक दफा
1: शरद जी, यानी आपके पतिदेव?
2: जी जी, मेरे पतिदेव। एक बार जनवरी में हमारी शादी की सालगिरह होती है और वैलेंटाइन डे फरवरी में आता है, तो उस समय मैंने उनके लिए कविता लिखी थी कि संत वैलेंटाइन क्या सचमुच होते हैं? हाँ, देखा है मैंने।
1: क्या बात।
2: मेरी कमजोरियों को थामते, मेरी भावनाओं को तराशते, सत्य शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही है मेरी बेटियों के पिता।
1: क्या बात है
2: जी। इस तरह से एक पूरी कविता शरद जी को समर्पित की थी जी।
1: तो बात कविता की चली है और पतिदेव की चली है, तो मुझे लगता है कि पतिदेव के लिए कोई गाना बनता है यहाँ पर, कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
2: पहला गाना मैं जो सुनवाना चाहूंगी, चूंकि आपने बात पतिदेव की कही है, तो जिस समय शरद जी ने मुझे प्रपोज किया उस समय दरअसल कैसेट्स का जमाना था, है ना, तो कैसेट में बड़े गाने भर भर के दिए जाते
1: और
2: थे,
1: ऑर्डर देके भरवाते थे।
2: हाँ,
1: ये वाला गाना,
2: ऑर्डर लिस्ट होती थी एक छोटे से।
1: हाँ।
2: तो शरद जी ने जो मुझे पहली कैसेट दी थी,
1: हाँ,
2: और उसमें जो पहला गाना था वो था हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो तो लगता है, तो वो गाना सुनवा दीजिए
1: जी।

0: आप सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी, और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहाँ से सीखा और कहाँ से विचार आया?
1: नहीं, दरअसल जब भी मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा चानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी, तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ 1 फुट का होता था, वो बहुत
0: जी
1: बड़ा नहीं होता था, तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे।
0: जी
1: मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी।

0: मन से, कहीं विधिवत सीखा नहीं,
1: जी
0: तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पर अपना ऐसे हाथ आजमा लिया करती थी।
1: जी
0: बाद में बच्चियां बड़ी हुई, मैं भी थोड़ा सा फुर्सत पाई, तो बच्चों ने मदर्स डे पर एक बड़ा सारा सिंथेसाइजर ला के दिया। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे ये भी महसूस होता है कि जब तक जीवन है तब तक आप सीखना चाहें तो सीखते रह सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। तो मुझे चूंकि संगीत का शौक है, तो मैंने उस सिंथेसाइजर पर धुनें निकालना शुरू की, और बगैर सीखे जो पसंदीदा गीत होते हैं तो वो मैंने उस पे अपने आप से निकालना शुरू किया,
1: जी
0: और इस तरह से दो दो चार चार लाइनें बजा लेती हूँ शौकिया।
1: जी तो ज्योति जी, सिंथेसाइजर की बातें हुई और अब आपके लेखन की दुनिया में हम छलांग लगाना चाहते हैं, फिर बीच
0: जी
1: बीच में यादों के गलियारों में भी सैर करवाते रहेंगे।
0: जी
1: बताइए
0: बिल्कुल।
1: कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली?
0: जी, लेखन की शुरुआत में कहूंगी कि जब मैं चौथी पांचवी या छठी क्लास में थी। हम लोग मंदसौर से हैं मूलतः, मेरा जन्म स्थान जो है वो मंदसौर है, मालवा का एक छोटा सा कस्बा है,
1: जी
0: इंदौर से करीब 4 घंटे का रास्ता होगा।
1: जी जी
0: तो चूंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे, और
1: जी
0: जिस जगह हम रहते थे वहां पर मेरी जो माँ है वो सबसे पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला थी।
1: क्या बात है,
0: हाँ जी, तो
1: क्या काम
0: हमारे
1: करती थी?
0: मम्मी, मेरी माँ नर्स रही हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी। और मैं यहाँ आपको एक लगे हाथों एक बात और बता दूँ कि मेरी माँ नर्स रही, और उन्हें अपनी नर्सिंग सेवाओं के लिए आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों वो सम्मानित भी हुई
1: क्या
0: हैं।
1: बात है भाई,
0: हाँ जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: तो चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, बाबूजी भी साहित्य प्रेमी थे, तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और अखंड ज्योति, ये चार पत्रिकाएं मुझे ध्यान है नियमित आती थी।
1: जी
0: और उसके थोड़े समय बाद बाऊजी को लगा कि ये पढ़ने की शौकीन है, तो हमारे यहाँ बाऊजी खरीद कर चंदा मामा, चंपक, नंदन, पराग, ये चार, देवकी नंदन जी उस समय शायद पराग देखते थे, तो
1: जी
0: ये पत्रिकाएं हमारे आई। तो मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन घर में साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी तो मैं वो जरूर पढ़ती थी।
1: जी
0: मुझे याद है कि मालती जोशी की धारावाहिक कहानियां इस तरह से धर्मयुग में लगातार आती थी, और हम
1: साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी
0: साप्ताहिक
1: थी।
0: हिंदुस्तान
1: जी
0: में, तो
1: बिल्कुल,
0: हम मतलब मैं पढ़ती और फिर वो वहां क्रमशः में आती तो उत्सुकता रहती थी कि आगे
1: आगे
0: क्या
1: क्या
0: हुआ।
1: होगा, क्या बात
0: तो
1: है।
0: मुझे लगता है लेखन का बीज वहां पढ़ने से शुरू हुआ, वहां ये बीज पड़ा, और फिर धीरे धीरे और अधिक, जहां जिन घरों में मैंने देखा है वाचन संस्कृति होती, वाचिक परंपरा जहां है वहां पर लेखन का बीज पढ़ने की संभावनाएं रहती हैं।
1: जी
0: तो बस इस तरह से वो पुस्तकें पढ़ने के बाद, और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अखंड ज्योति जो पत्रिका थी, और उन दिनों सारिका भी लघु कथाएं छापने लगी थी, तो अखंड ज्योति में छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग आया करते थे, तो शायद उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ पढ़ करके मेरे अंदर कहीं लघु कथा का बीज पनपा,
1: जी
0: छोटा छोटा लिखना शुरू किया। फिर जब मैं हायर सेकेंडरी में आई तो हमारे गुरु थे श्री राम ताम्रकर सर,
1: जी
0: तो जब उन्होंने मुझे एंकरिंग दिया कि उनको लगा कि इसके अंदर कुछ लेखन क्षमता है, तो उन्होंने कहा ज्योति एंकरिंग करोगी? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करूंगी। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम आपको प्रस्तुत करना है तो लिखना पड़ेगा,
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वहां से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, दो दो लाइनें ऐसे तुकबंदी की कि, तो सर ने मुझे कविराज कहना शुरू कर दिया कि अरे, तो बस वो एक कच्चा कच्चे, एक्चुअली बोलते कि वो एक पगडंडी थी कच्ची, सड़क पे आने में देर थी, लेकिन वो पगडंडी पे वहां चलना शुरू कर दिया था, यात्रा वहां से शुरू हो गई थी।
1: जी
0: जी
1: तो या वो जो यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पड़ाव जो सड़क पर पहुंची पगडंडी से, तो सड़क वाली यात्रा को याद कीजिए और कोई कविता सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
0: मुझे लगता है कि शादी के बाद मैंने फिर, मुझे लगता है कि विधिवत वापस से लिखना शुरू किया।
1: एक संग्रह हमें याद आ रहा है, दुनिया काठ की।
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: क्या इस संग्रह से कोई कविता सुनाएंगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आपने दुनिया काटकी का जिक्र किया है, तो दुनिया काटकी का विचार ऐसे मन में आया कि एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि उनको चौखट से ठोकर लग गई और वो लड़खड़ा के गिरने को हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने हाथ में पकड़ी लकड़ी से, छड़ी से संभाल लिया अपने आप को।
1: अच्छा
0: तो बस

0: बिजली की तरह एक विचार कौन था कि जिससे ठोकर लगी वो भी लकड़ी
1: जी
0: और
1: जी
0: जिसने सहारा दिया संभाला वो भी लकड़ी।
1: क्या बात है।
0: तो बस ऐसा लगा कि लकड़ी पर क्यों ना कुछ लिखा जाए।
1: जी
0: तो जब यादों को टटोलने लगी अपने शब्दों के संग्रह को, तो जब अभिव्यक्ति वो डायरी में आई पन्नों पर, तो मुझे लगा कि बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक लकड़ी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहती है।
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से ये दुनिया काठ की का अस्तित्व आया सबके सामने।
1: वो तो अंतिम संस्कार में भी लकड़ी
0: जी
1: का
0: जी
1: प्रयोग
0: जी
1: होता है,
0: बिल्कुल।
1: तो जन्म से मृत्यु
0: हाँ
1: तक।
0: जी, मैं इसकी पहली कविता सुनाती हूँ पहले आपको,
1: जी।
0: जिसका शीर्षक है पलना। गर्भ में मुलायम तरल में बहता शिशु बाहर आते ही माँ की हथेलियों में आ जाता है।
1: क्या बात है,
0: जो तरल तो नहीं लेकिन ममत्व उसे मुलायम ही बनाता है।
1: वाह।
0: देखिए, क्योंकि गर्भ में एकदम तरल है और फिर वहां से हथेलियों में आता है, लेकिन हथेलियां भी मुलायम है। लेकिन चंद पलों बाद ही लकड़ी का पलना उस शिशु का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है
1: जी
0: अगले चंद माहों के लिए।
1: वाह।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है कि आने वाले जीवन की कठोरता से।
1: क्या बात है।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है आने वाले जीवन की कठोरता से लड़ने की ताकत देने का।
1: वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: लकड़ी का पलना ऐसा होता है।
1: जी, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बातें करते हैं। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: गीत तो देखिए मुझे बहुत सारे पसंद है, क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, गीत पसंद है, गुनगुनाना अच्छा लगता है।
1: जी
0: मैं आपको बता दूं कि एक बार ताम्रकर सर ने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो किचन में रख के विविध भारती सुनना मेरा प्रिय शगल रहा
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: तो यहाँ पर मुझे दरअसल जिंदगी में मुझे लगता है सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, और वैसे भी मैं ब्लड ग्रुप से भी बी पॉजिटिव हूँ। तो मुझे हमराज का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनील दत्त साहब की मूवी थी, और गीत के बोल है न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो,
1: क्या बात है,
0: गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के
1: मुस्कुरा
0: जियो।
1: के जियो।
0: जी
1: हमराज
0: जी
1: फिल्म का ये गाना
0: हाँ जी
1: सुनते हैं
0: जी
1: यही।

0: हमराज फिल्म के गाने के बाद हमें बताइए कि ये नजर बट्टू क्या है। वैसे हमें पता है कि कहानी संग्रह नजर बट्टू, भोरवेला और सेतु, और नजर बट्टू पर शोध भी किया गया ऐसा कहीं हमने सुना और पढ़ा है,
1: जी
0: तो इसके बारे में बताइए। क्या फिलाडेल्फिया में इसी के लिए यही
1: नहीं
0: शामिल हुआ था?
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, फिलाडेल्फिया में जो मुझे सम्मान मिला था, मतलब मैं तो फिलाडेल्फिया नहीं गई, वहाँ की जो संस्था है वो वर्ष में एक बार भारत आती है और
0: अच्छा
1: विभिन्न शहरों में ये साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काम करने वालों को, उनके समग्र साहित्य पर ये सम्मान प्रदान किया जाता है हिंदी में काम करने वालों के लिए। तो वो फिलाडेल्फिया वाला सम्मान अलग है, लेकिन नजर बट्टू की जहाँ तक बात है, तो ये मॉरिशस की एक शिक्षिका है, वो इंदौर आई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अपने साथ मेरी कुछ 3-4 किताबें ले गई। जब वे मॉरिशस गई तो वहाँ पर महात्मा गांधी हिंदी शोध संस्थान है, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं। तो वहाँ की एक विद्यार्थी है श्रावणी बिहारी करके, उसने शोध प्रबंध लिखने के लिए उनसे कुछ विषय चाहे।
0: जी
1: तो जो मैम थी उन्होंने उन्हें मेरी नजर बट्टू किताब दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो और फिर बात करते हैं। जब उस विद्यार्थी ने वो नजर बट्टू किताब पढ़ी तो उसे मेरी जो कहानियां उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, अपना पूरा परिचय दिया और फिर ये जानना चाहा कि मैडम नजर बट्टू किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन नजर बट्टू का मतलब क्या है। तो मैंने उसे बताया कि नजर बट्टू यानी कि जो नजर से बचा है वो, तो जो नजर बट्टू होता है वो नींबू मिर्ची भी होते हैं जो कि कई बार बड़े बड़े ट्रकों पर लगे रहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: गाड़ियों में
1: तो
0: लगे रहते
1: गाड़ियों
0: हैं,
1: में।
0: स्कूटर
1: ये
0: बाइक
1: बात
0: पे।
1: अलग है कि उनसे ब्रेक
0: हाँ
1: नहीं लगता लेकिन
0: बिल्कुल,
1: एक आस्था होती है,
0: हाँ
1: इसलिए वो
0: हाँ
1: नजर बट्टू गाड़ी पर
0: हाँ
1: टंगाया
0: और
1: जाता है
0: खेतों
1: और
0: में किसान,
1: खेतों में
0: कृषक भाई भी
1: किसान।
0: लगाते हैं।
1: और जो एक और नजर बट्टू है वो है काले धागे। तो जो मेरी जो नजर बट्टू कहानी है, उस कहानी संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नजर बट्टू, वो काले धागे और नींबू मिर्च की थीम को लेकर ही वो कहानी है
0: जी
1: और कुछ मार्मिक कहानी है और लोगों को, पाठकों को वो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने नजर बट्टू की सारी कहानियों पर शोध प्रबंध किया। इस तरह मॉरिशस की जो विद्यार्थी है उसका शोध प्रबंध मेरी ये कहानी संग्रह नजर बट्टू पर संपन्न हुआ है।
0: और फिलाडेल्फिया में जो आपका संग्रह गया था जो शोध के लिए, वो क्या कहानी है उसके बारे में बताइए।
1: वो समस्त समग्र साहित्य पर मिला है वो सम्मान मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हिंदी में कार्य करने वालों को ही वो दिया जाता है वो सम्मान।
0: तो
1: जी
0: कैसे वहां जुड़ी आप?
1: मुझे ना ममता जी एक चीज लगती है,

0: कोई अगर मेरी किताब चाहता है तो मैं हमेशा अपनी किताबें देना पसंद करती
1: और
0: हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है,
0: जी
1: किताबें तोहफे में देना,
0: हाँ
1: और सबको ये सीखना चाहिए
0: जी
1: कि बड़े बड़े गिफ्ट की बजाय किताब तोहफे में
0: हाँ,
1: दे।
0: मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब किताबों की भेंट की बात चली है तो मेरी एक कविता संग्रह है माँ बेटी, वो मैंने माँ बेटी, सिर्फ माँ और बेटी पर कविताएं हैं उसमें। इंदौर के कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी में वो पुस्तक बारातियों को तोहफे में दी।
1: क्या बात है।
0: हाँ जी, मतलब 100-100 किताबें बल्क में खरीद कर और ये किताबें भेंट दिए। तो किताबें भेंट देना मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह जब मैंने किसी को भेंट की और मुझे पता नहीं चला कि वो उनके किन रिश्तेदारों के माध्यम से वो किताब फिलाडेल्फिया पहुंच गई, और जब फिलाडेल्फिया पहुंची, 2 या 3 पुस्तकें थी कुल,
1: जी
0: फिर उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आजकल ये सुविधा बहुत हो गई, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरा पूरा परिचय मांगा, मेरी बाकी किताबों की जानकारी ली, कुछ गूगल से प्रोफाइल लिया उन्होंने, और फिर इस तरह उन्होंने समग्र साहित्य का अध्ययन करके और फिर वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया।
1: क्या बात है,
0: जी
1: बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए, और
0: जी
1: बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद।
1: और बात कविता की चली है, माँ बेटी कविता संग्रह, तो उस संग्रह से कुछ लाइनें सुनाएंगी हमारे श्रोताओं को,
0: हाँ जी, वो जो काव्य संग्रह है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है।
1: कहानी है।
0: जिस समय मैंने अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे किए, बच्चों ने मेरे को, मुझे दोनों बेटियों ने बड़े सरप्राइजेस दिए कि 7 दिन तक मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, खूब सरप्राइज दिए। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने माँ बेटी, चूंकि मेरी माँ भी है, माँ का आशीर्वाद भी है अभी, तो माँ और बेटी को लेकर के एक एक मैंने कविताएं रच दी। इस तरह से वो, चूंकि 50 साल की हुई थी तो 50 कविताएं आ गई माँ बेटी में। उसकी कुछ कविताएं हमारे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटी की पत्रिका में वो कविताएं छपवाई हैं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी,
0: और एक डॉक्टर साहब है वहाँ, डॉक्टर मोड़, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन कविताओं के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के रिसेप्शन हॉल में लगवाए।
1: क्या बात है भाई,
0: हाँ जी,
1: वाह।
0: माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी,
1: माँ कभी मंदिर नहीं
0: माँ
1: जाती
0: कभी
1: थी।
0: मंदिर नहीं जाती थी। बाद में समझ में आया कि उन्होंने घर को ही मंदिर बना रखा था, वो मंदिर जाती किसके लिए?
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: क्योंकि उनके लिए उनका कर्म ही उनकी पूजा थी। नजर से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे, मगर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागों में नहीं, माँ के हाथों में है।
1: वाह क्या बात है।
0: जी
1: मेरे हिस्से का आकाश, जिसका जिक्र भी किया, जेब में भरकर सपने सारे और चुस्कियां, तो ये सारी कविता संग्रह
0: जी जी
1: हैं। इनकी इनका भी जिक्र कीजिए, क्या इनके पीछे भी कोई प्रेरणा है, कोई
0: नहीं,
1: कहानी है, और कितने
0: दरअसल
1: कविता संग्रह आए ये भी बताइए।
0: हाँ, मेरे 5 कविता संग्रह आए हैं। लोगों के लेखन की अलग अलग शैली होती है।
1: जी।
0: तो पहले तो मेरे हिस्से का आकाश कविता संग्रह की बात करूं, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि हर स्त्री को अपना अस्तित्व, अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बेशक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियों का अपना अस्तित्व है। स्त्रियों ने अपनी बेटियों को उनके बेटी होने के गर्व के साथ परवरिश देना चाहिए।
1: जी।
0: मुझे हमेशा अपने स्त्री होने पर गर्व रहा, और मुझे लगता है कि अपने हिस्से का आकाश तो हमें ले ही लेना चाहिए। कोई कहता है एक मुट्ठी आसमान, भाई एक मुट्ठी आसमान क्यों, हमारे हिस्से का जितना आकाश है
1: सारा
0: पूरा
1: आकाश,
0: दीजिए
1: क्या
0: ना,
1: बात
0: है
1: है।
0: ना, सारा आकाश।
1: हाँ
0: तो मेरे हिस्से का आकाश ये कविता संग्रह था। मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
1: जी।
0: वो कैसी है, तो उसकी एक कविता है जाल,
1: जी।
0: शीर्षक है जाल। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी,
1: क्या बात है।
0: उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, कुछ ना बोली, उसने कहा गुन्नी हो।
1: ओ
0: मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा, उसने कहा खर्चीली हो। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा निकम्मी हो।
1: ओहो
0: मैंने धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आकाश चाहा, उसने जाल बुन दिया।
1: क्या बात है।
0: तो क्या मेरा कुछ नहीं? तो क्या
1: मेरा
0: मेरा
1: कुछ
0: कुछ
1: नहीं।
0: नहीं?
1: जी

0: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया, कहा जा पूरा क्षितिज तेरा। जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। हम जरा विराम देते हैं बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
0: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी,
1: जी
0: वो वाला सुनवा दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: तो शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है, और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो वो जरूर पढ़ते हैं, और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसा सब। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाजत लेना पड़ती है, मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है, लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो।
0: जी
1: और

0: लेखन चूंकि मैं मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज्यादा नहीं होती।
1: कि
0: मेरा जो
1: उनके
0: लेखन का वक्त है वो दोपहर का है,
1: अच्छा जी
0: कभी कभी सुबह भी होता है। ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज आई कि मुझे ये लिखना है, तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है।
1: बढ़िया
0: कभी कभी काम करते करते कोई विचार आया
1: तो नोट कर
0: तो
1: ले रहे
0: आटा गूंद रहे हैं और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके चार बिंदु लिख लिए
1: वाह क्या बात है
0: जी, और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ। क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ। तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे
1: लिखने का वक्त नहीं
0: एकांत
1: मिलता।
0: नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती
1: जी तो ये
0: हूँ।
1: बहुत बढ़िया बात है।
0: जी
1: तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
0: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी। अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उनके उनके यहाँ मिले। उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ। तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये जो
1: अरे
0: येलो फ्रॉक वाली लड़की से। फिर उसके बाद हम काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र है, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए
1: जी
0: से। तो जैसे उसने मुझे देखा तो उसने जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आइए।
1: ओ
0: तो शरद जी वहां आ गए।

0: एक और मित्र है, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए
1: जी
0: से। तो जैसे उसने मुझे देखा तो उसने जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आई है। तो शरद जी वहां आ गए और हमारी दो चार मुलाकातें हुई। तब तक मुझे इस चीज का
1: अंदाजा नहीं
0: अंदाजा
1: था।
0: नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है। फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज कर दिया,
1: होली के दिन?
0: होली के दिन प्रपोज किया, रंगे पूते थे बिल्कुल।
1: हाँ
0: और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे। लेकिन
1: हाँ
0: तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे, एकदम अप्रत्याशित था वो। तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्जाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा। तो फिर फाइनली हम लगभग 1 महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही है।
1: ज्योति जी, एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते
0: जी
1: हैं। आपकी जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं
0: जी
1: और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया
0: जी
1: गया। मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला,
0: जी
1: शब्द साधिका सम्मान से आपको
0: जी
1: सम्मानित किया गया।
0: जी
1: किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
0: हाँ, ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला। इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन हैं।
1: जी
0: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान
1: गौरव
0: की
1: की
0: बात
1: बात है,
0: थी,
1: बिल्कुल।
0: गौरव की बात थी। यात्राओं के वृत्तांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है।
1: जी
0: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थक्के सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ।
1: बढ़िया।
0: तो जब हम यात्रा वृत्तांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीजें काम आती हैं। तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृत्तांत लिखती हूँ। तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी तो जितने भी कठिन यात्राएं हैं हम कर चुके,
1: जी।
0: जिसमें सिक्किम के, लेह लद्दाख के, ये सब तो थे ही। इसके अलावा जो हमारी एक प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की। वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है। मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं,
1: जी
0: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहां से लौटना ही नहीं चाहती थी।
1: वाह, क्या बात है।
0: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहां मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये भाव वहां पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में 2 बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
1: कहाँ पर की है स्कूबा
0: स्कूबा
1: डाइविंग?
0: डाइविंग मैंने एक तो मालवण में की है और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा।
1: जी
0: और इसी तरह मैंने हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में,
1: हाँ
0: और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
1: हाँ तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
0: शान की आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: इस गाने के बाद अब आपके एक और हुनर की बात हमें याद आ रही है, वो है कला, मांडना आर्ट,
1: जी
0: जिसमें भी आप माहिर हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका बीज पड़ा आपके मन में?
1: तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ पर बाड़ा होता था, एक गुआड़ी बोलते थे उसको मालवा में।
0: जी।
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो, हर घर के आगे एक ओटला। तो ओटला कैसा होता था कि वो पीली मिट्टी और गोबर से लीप के उसको बनाया जाता था।
0: जी जी
1: एक छोटा सा, समझ लीजिए, सिर्फ एक एक सीढ़ी ऊंचा होता था वो। तो जब उस पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप हो जाता था तो बिल्कुल प्लेन होता। और चूंकि मालवा की संस्कृति है मांडना, तो उस पर गेरू और खड़िया यानी सफेद और लाल रंग से डिजाइन बनाई जाती थी।
0: जी
1: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिजाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे, तो कोई
0: काकी
1: भाभी,
0: चाची होती
1: चाची,
0: थी।
1: काकी, मामी, बुआ
0: दादी
1: जी, मामी
0: नानी।
1: जी, ऐसे होता था। तो वो लोग, चूंकि माँ नौकरी करती थी, तो जब सब महिलाएं मांडने बनाती थी तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मांडनो बनाई ले, मालवी बोली में बोलते थे हमारे, आ जा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया एक कटोरी में लेके बैठ जाती थी, खड़िया, और उनके देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहां पड़ गया। फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, आ घर के आगे ऐसे सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे। चूंकि मांडना प्रेम था और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था,
0: जी।
1: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था, तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड व्हाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और व्हाइट कलर से उस पर डिजाइन बना ली, कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे।

0: ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चानी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज़्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ जी, तो वो क्या है, थोड़ा बिजनेस फैमिली वाली है ना,
1: हाँ,
0: तो चूंकि शरद
1: तो
0: जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते रहते हैं। तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडने बनाए वो करीब 300 के करीब मांडने बनाए मैंने,
1: वाह क्या बात है।
0: वो फिर लकड़ियां प्लाई लिया ऐसे करके। और आप यकीन मानिए कि मेरी जो पहली एग्जीबिशन थी उसमें सिर्फ 8 मांडने वापिस घर आए, बाकी सारे बिक
1: बिक
0: गए।
1: गए,
0: जी,
1: वाह क्या बात है।
0: तो इस तरह से अलग अलग होटल्स में वहां पर एग्जीबिशन होती थी, तो वो की। और उस वक्त तो सबको बना बना के गिफ्ट में भी यही दे दिया, कभी किताब कभी मांडना, ऐसा
1: जी
0: हस्तलिखित या हाथ की चीज की वैल्यू अलग होती है, उसके वो
1: बिल्कुल।
0: अनमोल होती है दरअसल।
1: अब लघु कथाओं की बात करते हैं। लघु
0: जी
1: कथाएं भी आपने लिखी हैं और
0: जी
1: संग्रह है,
0: जी
1: कुल कितने लघु कथाओं के संग्रह है और किसी लघु कथा का जिक्र कीजिए यहाँ पर।
0: जी मेरे पहला लघु कथा संग्रह था मेरा जलतरंग, दूसरा था बीजू का, तीसरा था जमा, भी 5 लघु कथा संग्रह है।
1: बढ़िया।
0: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊं मैं।
1: जी।
0: दरअसल

0: कुल जमा अभी 5 लघु कथा संग्रह है।
1: बढ़िया।
0: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊं मैं।
1: जी
0: दरअसल लघु कथा का शीर्षक है ढक्कन।
1: जी
0: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे। जीवन की सांध्य बेला में भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। विष्णु जी दिन भर में 5-10 दफा कोस लेते थे। उस दिन सुबह भी शहद की बरनी का ढक्कन खोलने का निरर्थक प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे। इस उम्र में आकर भी अकेलापन।
1: जी
0: अकेलापन कहाँ, उनसे 2 ही बरस छोटी सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी क्या इसी दिन के लिए? उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी। लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए, पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा, ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने
0: हाँ,
1: सुनाई,
0: लघु
1: और
0: कथा की विशेषता ही यह है
1: हाँ
0: कि उसके
1: जी
0: अंत में एक पंच होता है,
1: जी जी बहुत
0: और वो
1: बढ़िया
0: पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
1: जी।
0: जी
1: ज्योति जी, लेखन की दुनिया में
0: जी
1: बहुत तरह के बदलाव आए हैं,
0: जी
1: लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है? स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं? किस तरह की चुनौतियां आज अभी भी कायम है?
0: चुनौतियां तो हैं।
1: जी
0: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन स्त्री लेखन में जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ,
1: जी
0: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
1: जी जी
0: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी,
1: जी
0: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी, लेकिन अब खुलापन भी आ गया है और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह। तो
1: जी
0: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है। मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ
1: जी
0: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है।
1: जी
0: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिलाओं को, महिला लेखिकाओं को, मतलब संघर्ष अधिक करना पड़ता है।
1: जी
0: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें
1: जी बिल्कुल सही कह रही हूँ।
0: और अपने प्रयासों को जारी रखें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
1: बिल्कुल। हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताबें आपकी आ गई हैं,
0: जी
1: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
0: विषय आसमान से नहीं आते है ना, विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु।
1: जी
0: अब नवजात शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है। तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे लड़क छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी।
1: ओ
0: मतलब देखिए
1: हाँ
0: समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों
1: क्यों
0: फेंका।
1: फीका।
0: तो ये बीज हो गया, अब इसको विस्तार दे करके कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपनी एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा।
1: अच्छा
0: हाँ ऊपर से निकल जा भाई, तेरे को
1: हाँ।

0: जल्दी है तो।
1: लेकिन वहां उस उन 39 सेकंड में खड़े खड़े दिमाग में आया, तो मैंने जाकर के एक व्यंग लिखा कि हवाई जहाज में चढ़कर हम जाएंगे दफ्तर,
0: क्या बात
1: है ना।
0: है।
1: तो इस तरह से विषय कब आ जाते हैं, और इन सब विषयों के साथ साथ जनरली सामान्यतः लोग बोलते हैं कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास, और उसकी नींव ही ये पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी, और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
0: जी।
1: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है, और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं
0: जी
1: वो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
0: जी
1: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूंगी कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी,
0: वाह।
1: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
1: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली
0: कविता
1: कविता
0: सुना
1: सुनाती
0: चाहते हैं।
1: हूँ। उसका शीर्षक है अर्थी। पूर्ण हुआ है जीवन, अब तो विदा की बेला आई है, बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है, जीते जी जो मिल ना पाए कांधे सारे आज मिले हैं, चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं, जीवन भर जो इर्द गिर्द रही उसी काष्ठ की अर्थी सजी है, नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह तजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है दुनिया काठ की किताब से ली है।
0: जी
1: वह लकड़ी की खिड़की शीशा भी नहीं है जिसमें, जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने हवा के साथ, कभी कभी ले आती है मोगरे की सुगंध भी, और जब रहती है बंद तब भी रात में निकला चांद महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
0: क्या बात है, बढ़िया कविता। बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी,
1: जी
0: आपका
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मुझे
0: नमस्कार।
1: भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा, पिटारा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं बस वही एक चेहरा नजर आता है। इंसान के तमाम चेहरों में बस वही एक पहचाना सा चेहरा चारों ओर दिखाई देता है। जी चाहता है बस उसी का दामन थाम जिंदगी की राहों पर चलते रहें और जिंदगी का ये सफर कभी खत्म न हो।

पता था जुड़ेंगे दो दिलों के तार, किसे पता था दिल समंदर बन जाएगा, किसे पता था कि मिलेगा कोई साझीदार और बांट लेगा सारे गम और खुशियां। नरमो नाजुक रेशमी अल्फाज से जमाने की तलखी सोख लेगा। कहां पता था आंखों की नमी पर मुस्कानों के मोती सजा देगा, कहां पता था वो खुशियों के चांद को जिंदगी में धर देगा। नहीं पता था दो दिलों का, दो मौसम का, दो शहरों का चांद एक ही होगा।

कभी कभी मोहब्बत का जादू इतना हसीन होता है कि जिस मोड़ पर हम कदम रखें वहां कोई अपने आप मौजूद मिलता है। रिश्तों की

ही मिठास, वही चुपचाप साथ चलने का, हम चले तो साया भी कदमों के साथ था। राहें अजनबी थी मगर वो पास था। प्यार जब सच्चा हो तो जुदाई का फासला भी मिट जाता है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झर जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

जिंदगी की राहों में कभी फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे, मगर दिल कहता है अगर साथ में प्यार हो तो हर सफर आसान हो जाता है। ये राहें अक्सर हमें कई मोड़ पर ले जाती हैं, कभी मुश्किलें, कभी इम्तिहान और कभी दिलकश सपनों की डगर, लेकिन इन सब के बीच एक जज्बा है जो हमें आगे बढ़

दिखाता है, वो है प्यार। अगर प्यार करने वाले का साथ अधूरा ही छूट जाए तो जिंदगी वीरान निर्जन जंगल सी हो जाती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ाना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। यहां दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। साथ ही ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

अधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। भारत से राहत सामग्री लेकर पांचवां विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 374 अंक गिरकर 76,570 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 141 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन और तन्वी ने डेनमार्क के अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: আজীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ লগতে এজনক 4 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ৰায় দিছে। ৰায়দান কৰা গোচৰসমূহৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় থানা চৌহদত সংঘটিত এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰক বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হয়। আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলগীয়া 3খনীয়া T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৃংখলাৰ বাবে 15জনীয়া ভাৰতীয় পুৰুষ দলটো ঘোষণা কৰা হৈছে। শ্ৰেয়াছ আয়াৰে নেতৃত্ব দিবলগীয়া দলটোক তিলক বাৰ্মা উপ অধিনায়ক হিচাপে থাকিব। দলটোৰ আন কেইগৰাকীমান খেলুৱৈ হৈছে জছপ্ৰীত বুমৰা, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ আৰু হৰ্ষিত ৰাণা। অহা 13, 15 আৰু 17 ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত এই শৃংখলা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰক্ষীত নতুনকৈ 15ৰ পৰা 20 হাজাৰ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। ৰাজ্যত মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কঠোৰ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকিয়নি। যুৱ প্ৰজন্মক কৃষি কাৰ্যৰে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ আহ্বান। চৰকাৰৰ সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতাৰ আশ্বাস। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন প্ৰদান ব্যৱস্থা অধিক সহজলভ্য কৰি তুলিবলৈ অৰুণোদয় সাৰথীসকলৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ অংশগ্ৰহণ। আৰু আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে 3খনীয়া T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় পুৰুষ দল ঘোষণা।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। CEO ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित मुख्य परिचालन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी है। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भगचंद का और शेखोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉ सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल्स संसद के अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान दल आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा, ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली

0: भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोप के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
4: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने

0: पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
1: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक $136 अरब का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी और श्रीलंका के हटने के बाद भारत